0: के देहन में परम गति पाले ही है। सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस देहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई। बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिए नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रास्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं कहते हैं
1: संत जना के संग मिल बारे
0: हुक्म ले इधर उधर ना फिर

साथ संगत दे विच आत्मक तौर ते अंदरले जीवन वल्लों रूहानी जीवन वल्लों स्पिरिचुअल लाइफ वल्लों आत्मक जीवन वल्लों जो बिल्कुल खत्म हो चुका है मरिया होया इंसान है केंदे साधु दे टच दे द्वारा साधु दी जो एनर्जी दी फील्ड है उस दे विच आंदियां ही केंदे ओ इंसान भी द्वारा जिंदा हो जांदा है उस दे विच भी रूहानी जीवन दी शुरुआत हो जांदी है। साध के संग सदा प्रफुल्ल साधु दे संगत दे विच हमेशा इंसान दी जो सोल है ओ डिवेलप करदी है ओ ब्लूम करदी है। इस करके गुरु बाबा जी भगत रविदास जी दे इस आइडिया नू बाणी दे राही सपोर्ट करदे हन उस दे नाल सहमत हन कि गुरुआं दी भगतां दी एक ही विचार है ओए है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जो प्राणा दा नाथ है ओ सबना दा प्यारा है अगर उसनू मिलना है तो एक ही ढंग है ओ है साध संगत प्रेम नाल गाओ।

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संग है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक साधुओं दे नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन ए जिहड़े कच्चे हन इन्होंने ते इत्थे ही छड़ जाना है। कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे, साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड्डा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जड़ियां हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस के नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचरा समझ के पाड़। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहते जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साडियां निगाहां दे विच जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंद तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंद तह जाए। जड़ी मक्खी है वो चंदन ते नहीं बैठती, उनू त्याग देंदी है। जह बिगंद जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उसका कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो, जेड़े गलत सुभा पक चुके सन। आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है। ये सारे पक्के हुए सन। कहते सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत। कहते मैं इस सारे दे सारे फौरन पाड़ सीते, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वह उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं। पहला उसको सुनो, फिर उसका असी अर्थ करांगे।

हाथ से सिद्धांत सुख बसा।

0: जो सांस गिरा सत्याए मेरा हर हर सोमर से जो गुरु मन भाव
1: जनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे
1: तिस गुर सिख गुर

कुछ जो जो चीजा कुछ हैं थोड़िया बहुत दो तरह का कीर्तन है। एक तो है कि असि सब भी करना है और कुछ सीखना भी है कुछ सुनना भी है। बड़े प्यार नाल गुरु पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ए राग देव गंधारे विच पुराने बुजुर्ग गाया करते।

राग गौड़ी दीपकी विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

विष्माद नाद विष्माद वेद विष्माद जीव विष्माद भेद विष्माद रूप विष्माद रंग विष्माद नागे फिरे जन विष्माद पौन विष्माद पानी विष्माद अग्नि खे डैबडानी विष्माद धरती विष्माद खानी विष्माद साध लगे प्राणी विष्माद संजोग विष्माद वजोग विष्माद

0: सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा जी दी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत हजूरी अंदर बैठ गुर उपदेश अते उदेश नू उत्साह सहित सरवण कर रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई सतगुरु दा अपना ही परम पवित्र आपा जियो वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतह।
0: सतगुरां दे चरण शरण आण तों महाराज जी ने मेहरामत करके असां सारिआं नूं ही अपने वाकां द्वारा अथवा अपने हम ख्याल परमेश्वर दे रंग अंदर रंगीजे होए महापुरश ग्रस्ती संत किरत ते कीरत अंदर निपुण भगत कबीर जी दी जुबानदानी द्वारा अंतले शब्द अंदर सानू जीवन दे परम सुख पर आनंद परम तत् अते पूर्ण अवस्था दी प्राप्ति दा ढंग फरमाया है। ए जुगतां ए तरीके ए दौर गुरु साहिब जी आप भी फरमान करदे रहे अपने नवाजे गुरसिखां महापुरशां भगतां ते संत जनां दी राहीं भी सतगुरु जी ए उपदेश हर बनी रहो इंसान तक पहुंचाउण दे इच्छक रहे। इस उपदेश नूं महापुरश अज भी अपनी रसना द्वारा अपनी कलम द्वारा ते अपने जीवन दी जुगत द्वारा अमली तौर उत्ते प्रचार रहे। कलमा नाल उपदेश करने वाले भी अनेका ने रसना नाल भी उपदेश करने वाले उपदेशक बेअंत ने पर बड़े फिक्र नाल बड़े उचेच नाल उस परमेश्वर दे यस नू जीवन दे

अत कल्याणकारी अत सुखदाई ते अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तां वी चंगा ही है, रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है। नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए इन्ना क जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने हार होइए। अपना बोलिया आप सुने।

કે એ વસ્તુ ઇસ વસ્તુનું કોઈ લેન એને બદલે છે ખાન દાખી મરદાનમાં કાહી થી ફિરદા રહ્યા और इस वस्तु के लैन वाला कोई गाहक नहीं हार के चौरस के मरदाना खड़ा हो गया सोच रहा है मार्क ने उठ के एडी वड्डी दात बख्शी अर्थ के लैन वाला कोई કોણ લવે જાય છે મરદાને ને સામે તકે આ એક અરાયણ બેઠી જેની ટોકરી ગાજરા એ મૂલ્ય મરદાને ને સોચ્યા ચલો મરદાને અરાયણ નું દે દેને કુછ ખાણ નું દે દેને ખા કે આપણે પેટનું ચટકા જોઈએ છે ભૂખના દુઃખ દૂર કરે મરદાન નારાયણ દે કોળ આપી ક્રોધ મુઠ ખોલી દે કે આ માઈ આ લવેગી નારાયણ ને તક્યા તે સિર ફેરે મેં એસ પથ્થરનું કી કરું પર ખ્યાલ હૈ તો પથ્થર પર ચમકદા બડે ચલો લઈ લેની આ મેરે બચ્ચે પે ખેલ બચ્ચિયાં ની ખુશી વાસ્તે માતા પિતા કેટલી કોશિશ કરી બચ્ચિયાનું ખિલૌને લે કે દે પૈસે દે મઠાઈયા દે સાડે બચ્ચે ખુશ બચ્ચિયાની ખુશી વાસ્તે માતા પિતા ની કેટલી કુરબાની અનો બચ્ચે જો વડે હોકે માતા પિતા ની ખુશી માતા પિતા ની બચ્ચિયા ની ખુશી વાસ્તે કેટલી વડી કાલ ઓ બચ્ચા ધન હૈ જો માતા પિતા ની કરતી બાબા રામસિંહજી મહારાજ પૂર્વ મહાપુરુષ અપની પવિત્ર પાવન રચના તુએ વચન કર દે કે જીસ બચ્ચે ને માતા પિતા ની પ્રસન્નતા લઈ લઈ હૈ ઉતે રબ ની સદાય પ્રસન્નતા સદાય ઓકે માતા પિતા ની બડી કાળી અયો સાહેબા ને વાણી જી લિખ્યા ગુરુદેવ માતા ગુરુદેવ અરણ્ય તકિયા હૈ તો પથ્થર પર ચમકના ભરા લઈ લઈયા મેરે બચ્ચે બેઠે લે પ્રધાને ને કહ્યા માઈ એને બદલે કી દે દેગી તો તારી સાધ સંગત અરાયણ ને ટોકરી વિચો એક મૂલી ચૂકી મરદાન તો બડા હેરાન માલક ને તો કહ્યા સી મરદાનિયા બડી વડી દાત હૈ
पहला तो लैण वाला कोई गाहक नहीं मिले, जे मिले तो मुल की पिया एक मुल प्रधाने ने क्या माई एक मूली छोड़ी है तू दो मूलियां तो दे। रैण हस के मैं तो एक मूली भी तेरे उते एहसान करके पी दी, परदेसी जापदा दूरों आया जापदा दूर का पाबी जापदा क्योंकि तेरे पैरों की धूल पर बिटे भी चुनगी। एक मूली भी ऐसा मरदाना अगे अगे हलवाई की दुकान, हलवाई ने तरह तरह दियां मठियाइयां ताजिया तैयार करके सोने चांदी के वर्क लगा के थालां च रखी ताजिया मठियाइयां वल करके भुखे मरदाने के मूह च पानी पाया। मदद हलवाई नूं दे दित्ती, गाहकां दी भीड़ पार तो बड़ी सी, मरदाना लंघदा लंघदा हलवाई दे कोल सी। क्यों जी आ लोगे, हलवाई ने तकिया ते सिर फेरे, मैं इसनू की करन ख्याल आया अद्धी शताकी का वट्टा गुम हो गया उहदी थां ते रख लिया करन, क्योंकि उस वेले पत्थर दे ही वट्टे चाहिए जिस तरह कल लोहे दे वट्टे हैं, कई तरह के साधन बन गए हैं हूं तक, और उस वेले पत्थर दे हूं भी कदे सुल्तानपुर तुसी जाओ जिथे मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी ने मोदी खाना चलाए दुकान चलाई तकड़ी तोली, वो वट्टे हूं भी पे हलवाई ने पके है तो पत्थर पर चमकदा बड़ा, मेरा भी इतनी ताकी का वट्टा गुम हो गया उसकी थां ते रख लवांगा। हलवाई कह लगा मैं नहीं, मरदाने ने कहा इहदे बदले फिर मठकाई किन्नी दोगे, हलवाई ने कहा इन पा मठकाई मरदाने ने कहा जी पा थोड़ी है कोई ज्यादा दो क्योंकि मैं कला नहीं मेरे नाल मेरा मालिक नहीं, मैं उन्हें भुखा तो नहीं कहना पर तीन दिन हो गए हैं रोटी उन्हें भी नहीं खाई, पता नहीं केड़े आहार नालों जी एक शेर मठियाई दर्ज हलवाई ने क्या इस तो ज्यादा नहीं मेरी मरदाना निराश होके वापस अगों कोई भला पुरुष मिले उदास मरदाने वाल तक के पूछ गया जी हो जी तुम उदास क्यों हो, मरदाने ने सारी विख्या दी मालिक ने सुट के दात बख्शी है कोई लैण वाला नहीं मिलता, किसी ने दिखानी सी मरदाने ने क्या दिखाई किनू अरैल और किसू हलवाई इन्हें क्या क्षमा कर जी थोड़े को वस्तु है ये अरैणा से हलवाइया के लैण वाली मरदाने ने कहा फिर कौन लेगा, इस गुरमुख ने कहा फलां बाजार में चले जाओ उत्थे एक बड़ी सुंदर दुकान उस दुकान के अंदर शीशे ने चौकियों के अंदर मैं इन्होंने कई लाल लाल गीटिया पईया तकी उत्थे ले जाओ एदा मुल उत्थे कर बरदाना थोड़ा जिहा खुश है वो दुकान किसकी है जौरी उस जौरी का नाम की है जी उसका नाम है सालस है मरदाना पुछता पुछा साल सराय जौरी की दुकान पे आके चले दुकान बड़ी सुंदर
बड़ा सुंदर कारपेट बिछिया है, अंदरों सेंट दियां खुशबू आ रही है। मरदाने रही जिस वेले दुकान के अंदर पैर पाए, साल सराय में तकिया कोई आया, बड़े अदब नाल उठ के हाथ जोड़ के आओ जी आया नू इत्थे बैठ। मरदाने ने सोहनी चेयर पे बिठाया, कुर्सी पे बिठाया। मरदाना बड़ा खुश, सोचन लगा मन लेना देना तो एक पासे ने, पर बोलिया बड़ा मिठा, मिठा बोलना भी एक जादू, मिठा बोलना भी इंसानियत। इंसान हो के कौड़ा बोलता है, ओदा बोलना परवान, ऐसा वचन कदे भी ना करिए जिदे नाल किसे दे मन में दुख। भाई गुरुदास जी ने भी लिखा, सिख दा जीवन पिछले राती जागण, नाम दान इशनान दिलाए फिर मिठा बोलन निव चलन हाथों देके भला। परदाना बड़ा खुश, मिठा बोल। परदाने ने मुठ खोली, शाह जी आ लोगे? सासराय ने क्या जरा नौकर नु बुलाया, बच्चा धरका जी मालिक। अंदरों चौकी ले आंदी, एदे उत्ते चिट्टा रुमाल पापा जी। सासराय ने मरदाने वल तकिया ते किया, जी ए कोई कौड़ियां नहीं जो मिट्टी कट्टे विच रोलोगे, ए लाल है इनू इत्थे रखो। मरदाने ने रख, साल सराय ने परख वाली अख ना लाल नू तकिया, फिर लाल वल वेंदिया वेंदिया साल सराय का सिर चुक गया, सिर चुकिया। नौकर वल तकिया, बेटा धरका जी मालिक, लिया 100 रुपये की थैली लिया। साल सराय ने लाल दे के रख के मत्था टेकिया, लाल ते 101 रुपया साल सराय ने मरदाने की झोली का। मरदाना बहुत हैरान हो गया, सोचने लगा कदे 101 रुपये की थैली वल तकदा, कदे साल सराय के मुंह वल वेखदा है, रह नहीं सकिया। मरदाना कहने लगा, शाह जी गुस्ताखी माफ करे, अजे भला कोई नशा पानी तो नहीं खाते पीते? आखो श्री वाले। साल सराय ने क्या कोई नशा? प्रधाना कह लगा, फिर आ के किता जी, नाले लाल भी नहीं लिया नाले 101 रुपया हो। साल सराय के नेत्र पर उस्तादा के वारे वारे, मेरे उस्ताद ने मेनू किया, साल सराय यो जिया सच्चा ते सुचा लाल दुनिया से, पर जे तेरे पाग जागन यो जे लाल दे तेनु दर्शन हो जान, ओदा मुल पा के अपमान न करी, 101 रुपया दर्शन पे कर। ए तो इनी भेंट। सरदाना बड़ा खुश, बाबा तू भी तन है, तेरी दात भी तन, तेरी भेंट 101 रुपये, पर कौन पिया करता है? साल सराय जिन्हें परख लिया लाल लाल हो, पर जिस परख वाली अखा के कोल आ गया तो मुल नहीं पै रहे, पेट अदब हो रहे, सत्कार हो। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने लिखे, बार

सौ रुपए की थैली लेके पहुंच गया। किथे मेरे धन गुरु नानक पातशाह जोता जगा रहे। साहबां दे अगे जाके रख ते मथा टेक के मरदाना कहन लगा, महाराज आ लो अपना तिलसम, कोई तो तुहाडे लाल दा मुल एक मूली पे पाउंदा, कोई पा मठियाई ते कोई एक सौ रुपया दर्शन भेट। हजूर मुस्कुरा कहन लगे, मरदानिया कोई समझ आई नहीं पाती। मरदाने ने हथ ऐ मेरे साई, दुनिया नु सोझी पाण वाले हा, अज मैं गरीब नु भी सोझी पा, मैं डूब नु भी सोझी। हजूर कहन लगी, मरदानिया की है? महाराज आप कृपा करो। तो मेरे धन गुरु नानक साहब पातशाह कह लगे, मरदानिया एक कीर्तन का हीरा है, आखो श्री वाह, एक कीर्तन का हीरा, इसका अरैन की तरह मुल पाते, हलवाई की तरह मुल पाते। मरदानिया जी ने कीर्तन का मुल पा दिता है, उन्हें कीर्तन को समझे, जिहड़े प्यार वाले हैं सालस राय वर्गे, वो फिर कीर्तन की भेट कर दे, भेट परवान चाहे लख करे चाहे तक, जिहड़ा मुल पांदा है या मुल पवांदा है वह पहुंचे। प्रधानी मेरे सिख जिहड़े हैं वो बाणी का मुल नहीं पाते, भेट कर दे, उन्हां दी भेटा गुरु नानक के दर से मालिक के दर से प्रवान हो जाए, क्योंकि कीर्तन जिहड़ा है एदा मुल कीर्तन की है। अजूर बाणी प्रभु।

सब कुछ अर्पण कर, पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते, फिर उना ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे वपारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा है वाहिगुरु तों।

मनुख भक्ति करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणा दी पूजा कर, उना दे चरणा ते सियाणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहने ने जवां दी मार तो तेनू छड़ा लेंगे। कबीर जी ने भी आखिया

गोविंद हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब में दे।

ਅਕਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਥ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹੋ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤਾ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਜ ਕੇਵਲ, ਐਸਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਵੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਡੋਰੂ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿੰਗਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਜ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਸਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਿਆ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲ ਤਾਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ 2-4-10 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਬਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਰਬਾਬ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਸਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਜ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣ ਚ ਆਏਗੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਦਾਰਥ ਬਾਅਦ ਚ ਪਏਗਾ। ਬਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 84 ਰਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਵਰਤਾਏ ਨੇ ਸਨ। ਰਾਗ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸੰਗੀਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖੋ ਚਾਹੇ ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਜਾਂ ਤਤਕ ਦੇ ਰਾਗ 31 ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਇਸ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜ ਜਾ, ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ। ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਤਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਨ ਹੱਥ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਾਤਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਰਾਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਵਾਹ ਅਦਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਭੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਤੀ ਭੇਟਾ ਹੀ ਉਂਝ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਰਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਰਠ, ਧਨਾਸਰੀ, ਜੈਤਸਰੀ, ਇਹ ਤਾਦ ਰਾਗ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਤਰਤੀਬ ਕੈਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੰਤ ਨੇ, ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਸੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ,
सतगुरु जी की बाणी तो कहते चलो बच्चे एवं सीख लेंगे, इसकी कोई बहुती लोड़ नहीं, क्योंकि जिवें कि बच्चे ने औगुण सीखना हो सिखाना नहीं पैंदा, औगुण मनुख आप ही सीख लैंदा, गुण सिखाना पैंदा। भाव गुरबाणी नूं किन्ना कसी वडेरा दर्जा दिता, कदी सोच के देखो, कदी अपने जीवन दी अंतर आत्मे वल ध्यान करके देखो कि असीं गुरबाणी नूं की समझ के बिहेव करदे हां उहदे नाल। खैर एक दूसरा विशा हो जाता, गरीब नवाज ने सानू संगीत नाल सानू बरतन दिता कि मेरे सिख दे अंदर शब्द रब दी बाणी टिक सके। सारा संसार को मैं विचरदा सुनदा सा पे उत्थे राग सुन वास्ते कौन आएगा, पर उहदे नाल मेरा एक ए जवाब हुंदा सी पे सुने बिना जाएगा कौन। जदों उन्हां दीआं इहो जिहीआं आवाजां सुनदा सां, क्योंकि आप जिहीआं दी बख्शिश दे नाल हर महीने क्लासीकल सुनन दा बहुतात समां मिलदा, रूटीन च महीने च भी बहुत बार मिल जांदा, महीने बाद हर दसवीं ते जोड़ मेला हुंदा ही है, और संगरांद ते हर इक ते अमृत संचार भी हुंदा, उस रोज भी काफी समां मिल जांदा गुरु मत अनुसार कीर्तन सुनन दा। सतगुरु जी ने सानू वर्तन दिता है संगीत, इस तो आप बिछड़ना नहीं, अगर बिछड़ जावांगे तो ठीक नहीं रहेगा, साडे अंदर बाणी नहीं टिकेगी। और उस तो अलावा संगीत एक शक्ति का नाम है, ध्यान रखना संगीत एक शक्ति है। सतगुरु जी ने सानू दो नेत्र दिते ने ज्ञान दे, जिवें तुहाडियां दो अखां दे विच इक रोशनी है, हर एक मनुख नूं दो नेत्र दिते ने, पर दो नेत्रां च दो नजरां नहीं, दो अखां विच इक नजर बसदी है। इसे तरह गुरु गरीब नवाज जी विच इक शब्द है, इक संगीत है, दो नेत्र ने ज्ञान दे, इन्हां द्वारा जिथे इन्हां दा एंगल मिल जाएगा दोनों दा उत्थे ईश्वर प्रगट हो जाएगा। जिस जगह जाके कोई अपना एंगल मिला लेगा उथे जाके हर हालत च ईश्वर प्रगट हो जाएगा। दो नेत्र दिते ने सानू, इन्हां नेत्रां द्वारा ही ईश्वर दा दीदार करना होएगा। गुरु गरीब नवाज जी दे वचनां नूं आपां इन्ने सोहणे तरीके दे नाल अंदर हिरदे च बिठा लईए। गरीब नवाज जिवें हुणे मैं बेनती करदा सां, संगीत एक शक्ति है, पर जदों असीं किते बैराग दा प्यार दा संगीत पढ़दे हां तां बदो बदी पत्थर हिरदे चों भी अंसू उतर आउंदे ने, पर जे किते असीं साईं दे प्यार दा संगीत पढ़िए तां बदो बदी ही मनुख दे अंदर साईं बारे प्यार पैदा हो जांदा। पर जे असीं इस संगीत नूं जिस तरह ढाडी सिंह बारां गाउंदे ने बारां विच गाण लग जे तां मनुख अंदर जोश भी पैदा करदा, क्योंकि संगीत इक शक्ति है, उहदा अपना सुभाव शक्ति है, मन भी एक शक्ति है, इस नूं रोकण वास्ते शक्ति चाहीदी है, करामात नूं कट्टण वास्ते करामात चाहीदी, लोहे नूं कट्टण लई लोहा चाहीदा, आपां सारे जाणदे आं। सतगुरु जी ने मन वर्गी जिहड़ी अथाह शक्ति चंचल शक्ति है उस नूं कीलण वास्ते सानू अपना मंत्र ते संगीत दिता। मैं तां आम कई बार बेनती करदा हां कि जदों असीं संसार दे विच इक योगी नूं बंगाले नूं बीन बजांदिआं देखदे हां तां उसदा की असर हुंदा, सप वर्गा चंचल मन, सच सप वर्गा शैतान, और सप वर्गा जालम जिहड़ा अपने बच्चे नूं भी माफ नहीं करदा, खा जांदा जमण वेले, बेवफा मन। जदों सतगुरु जी दी कृपा सदके कोई जोगी सारंग राग विच बीन दे नाल उस नूं अपना मंत्र पढ़ के सुणाउंदा है तां उहदा रिएक्शन की है, उहदा रिजल्ट की है,
सामने की हुंदा, शैतान मन सपच पर खड़ जांदा, किलिया जांदा, पे जे गुरु नानक दा मंत्र मिल जाए मनुख नूं, गुरु नानक दा मिल जाए संगीत, फिर क्या यह शक हो सकती है सिख दा मन नहीं लगेगा। बहुत शक वाली गल हो जाएगी जे ये आखोगे भी गुरु नानक दा मंत्र मन नहीं जोड़दा, क्योंकि कामल मुर्शद दी हजूरी विच कामल मुरीद वश होया करदा, नहीं तो मुर्शद नूं उलांभा मिलदा। कामल नहीं पैदा किया, ध्यान रखना पे सतगुरु जी ने सानू एहो जिहा संगीत दिता जिहड़ा कि मन नूं कीलदा है। पर एक गल दा ध्यान रखना, संगीत मन नूं जोड़न ते तोड़न दा माध्यम भी है, पर जे ए संगीत इस दरबार च वज के तुहानूं कील लैंदा, पर जे ए संगीत किते बेसबादे दर ते बजण वास्ते चला जाए ते फिर मन तोड़ भी देगा। जितना इहदा लाभ है उतना नुकसान भी है। उस दे नाल जिवें जिस रास्ते नाल तुसीं चल के इत्थे आए हो, रास्ते दा सुभाव है तोड़न ते जोड़न दा, मंजिल नाल रास्ता जोड़दा भी है पर मंजिल तो रास्ता तोड़दा भी है। पर जदों इस स्थान वाल आए हो, मुंह करके चेहरा करके सन्मुख होके, तो उहदा रिजल्ट की होया पे मंजिल मिल गई। पर जदों हुण जाओगे ना, जदों पिठ कर जाओगे मंजिल वाल, तो पिछड़ भी जाओगे। ध्यान रखना, जदों पिठ कर जाओगे इहदे वल तो इहदे कोल पिछड़ भी जाओगे। भाव जिवें रास्ता एक माध्यम है जोड़न और तोड़न दा, इसे तरह संगीत भी मनुखी मन नूं माया विच जकड़े मन नूं तोड़न ते जोड़न दा साधन है। पर सतगुरु जी ने हर अपनी रचना दे उते, हर अपने शब्द दे उते मोर ला दित्ती पे ऐ जिहड़ी मेरी रचना है, ऐ जिहड़ा मेरा शब्द है, चाहे वह अष्टपदी दे रूप है, चाहे शब्द दा रूप है, चाहे श्लोक दा है, पर उहदी तर्ज लिखी, ट्यून लिखी, जिहनूं असीं राग कहिंदे, पे ऐ मेरी रचना ऐस राग विच गाउणी, जिहनूं निर्धारित कहिंदे आपां, जिवें तुसीं अज सुणी रहे हो। पर जे असीं राग सोरठ दा होवे, गावियो उहनूं जैतसरी विच तसीर नहीं रहेगी। सतगुरु जी ने हर रचना दे अपने दे उत्ते उहदा सिरलेख लिखिया है, हैडिंग लिखिया है, संगीत लिखिया है, उहदी तर्ज लिखी है, ट्यून लिखी है। कदाचित नहीं भुलना चाहीदा इस गल नूं, क्योंकि इसने अगर असीं उसकी ट्यून बदल देंगे, उसका संगीत बदल देंगे, उसका असर बदल जाएगा। एक संगीत वह है जिहड़ा इत्थे बारिश पाण दी समर्था रखता है, मेघ मलार, पर एक संगीत दीपक है पर वह अग भी ला दिंदा। एक शांति करन दा भी साधन है, एक अशांति पैदा करन दा भी साधन है। इस करके आप जी ने उस संगीत नाल संबंधित होना जिन्हों असीं गुरमत कहने, गुरमत दा संगीत, गुरु नानक दा संगीत, जिस शब्द नूं जिस राग च पा के मेरे गरीब नवाज जी ने गा के सानू सिख्या देती, सेध दिती है, आपां उसे राह ते चल के अपने जीवन नूं सफला करना, ना के मन आईयां तरजां पढ़ के। वैसे तो साईं नाल जुड़न दे लई जिवें भी गीत गाया जाए सारे प्रवान ने, पर जेड़े गरीब नवाज ने मोहरां लाईयां होईयां ने इस शब्द नूं इस राह विच पढ़ना, सानू उहनूं तब्दील नहीं करना चाहीदा, क्योंकि सानू सतगुरु ते शक नहीं करनी चाहीदी कि ठीक नहीं लिखिया, किंतु हो जाएगा गुरु ते। अगर उहदे लई जगह बदल देंगे, इहदा मतलब यह होया जो गुरु साहब जी ने उहदी ट्यून लिखी है, राग लिखिया, पे क्या ठीक नहीं लिखिया? क्या मनुखी मन की जो सोच होएगी, क्या गुरु नानक साहब की रूहानियत तोते जाएगी? की सोच है साड़ी? इस वास्ते गरीब नवाज ने सानू जिस तरीके नाल जोड़िया, असी उसे तरीके नाल रास्ते से चल के मंजिल तक पहुंच सकांगे, और सारिया ने सदा वास्ते अपने जीवन नू एहो जी खुराक देनी कि सतगुरु जी के बचन तो लांभे नहीं जाने की कोशिश करनी। गरीब नवाज दस्से मार्ग अनुसार ही चलना होएगा, ता ही सानू दा पूरा फायदा हो सकता, ता ही ए तुरकी बाणी मनुख दे मन नू माया विच जकड़े होए नू अपने वल खिच लेगी, क्योंकि ईश्वरी सद है जो तुरकी बाणी है, ए रब दी सद है, रब दी आवाज है। जिधरों आवाज आई साडा मन उस पासे वल चला जाएगा। ध्यान रखना,
मैं एक गल होर मैनू याद आ गई पे ईश्वरी सद जेड़े बंदे नाम नू जप के नामी नू मिले ने जिमें भगतां दी बाणी आंदी है जां गुरु सिखां दी बाणी आउंदी है गुरुआं पीरां दी बाणी आदी है आदि गुरु धन गुरु गुरु नानक साहिब जी आप नारायण कला धार जग मह परवरियो आदि गुरु है। बाकी भी जितने गुरु ने वो नादी गुरु ने ध्यान रखना वह गुरु बनाए गए ने गुरु थापे गए ने पर धन गुरु नानक साहब जी नू किसी ने गुरु नहीं बनाया आदि गुरु है। जेड़े नामी नू मिले ने नाम जप के पर जो नामी नू मिले ने तो नामी ने एक मैसेज दिता एक संदेश दिता अपना ए जे मेरे को जीव बिछड़ के चले गए ने ना मैनू भुल गया मेरी उंगल छड़ गए लिब छुड़की लगी तिसना ऐसी अवस्था धारण कर ली उन्हां वास्ते कि मेरे या सद लै जा मेरी आवाज लै जा ए मेरी आवाज उन्हां नू पहुंचा दे वो इस आवाज दे थ्रू मेरे तक पहुंचणगे वो वापस मेरे तक पहुंच जाणगे ए मेरा एक एड्रेस है। तुसीं सोचदे होवो रविदास वर्गा जोड़े गंढण वाला नामदेव जी वर्गा चंदे छापण वाला सदने कसाई वर्गा तन्ने जट वर्गा ए तां जितने भी भगत होए हन सारे एक दम अनपढ़ता दे जीवन च विचरण वाले भला उन्हां नूं राग दी की समझ सी पर गल जदों रब दी आई है तां राग दे विच ही आई राग तों बिना कोई बोली नहीं बोली भाव रब ने जदों भी कोई बोलिया कदी तां राग विच बोलिया। इथों यह सिद्ध हुंदा कि राग दी परमेश्वर दा जिहड़ा अपना प्यार है वह राग ही है राग नाल ही बोलदा जदों भी रब बोलदा तां राग च बोलदा जदों भी ईश्वर बोलिया तां राग च बोलिया ते फिर सिख नूं भी सुभाव बना लैणा चाहीदा कि राग च ही बोले गाण वेले राग च ही गावे कितना चंगा हो जाए फिर गुरु का वचन मन्या जाएगा फिर यह सिख हो जाएगा सतगुरु जी सिख्या का अधिकारी हो सकेगा और दात इहनूं प्राप्त हो सकेगी। इस वास्ते सतगुरु जी ने सानू सदा ही उस मार्ग ते चलाया जिहदे नाल मंजिल आंदी उस पासे वल साडा मुंह कीता चेहरा कीता जिस पासे वल मंजिल आंदी उस मंजिल दे सन्मुख कीता उह साधन बख्शिश कीता जिहदे नाल मंजिल आनी है। इस करके ध्यान रखना पे सानू इह रस्ता कदी नहीं त्यागना चाहीदा। ठीक है पे साईं दी बंदगी गुरु साहिब जी बचन करदे ने पे गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाईए पा जिमें भी लईए हिरदे प्यार होना चाहीदा यह सुनिया भी उधार करती है ते पढ़िया भी करती है। धरती च बीज सुटदा ना जिमीदार उन्हें कदी दाने सीधे करके नहीं पाए एक एक सीधा करके दाना नहीं पाया छट्टा दिता गया जिमें भी डिप उमें जम पैंदे ने जम के थले वल नहीं जाते जेडे पुठे दाने डिगदे ने वो जम के कदी थले वल नहीं गए जम के उपर वल ही गए ने क्योंकि ईश्वर की जिहड़ी खिच है ना आवाज है जदों भी जाएगी निरंकार दे देश जाएगी। इस करके आप जी ने मेरे जहे गरीब ते अथाह कृपा करके गरीब नवाजी की मैं आप जिया दा सीने दी गहराई चो सीने दी डूंघाई चो खैरो बहुत ज्यादा वड्डे लफ्ज नहीं कह सकांगा पर जिन्ना सत्कार करदा हां यह साबित हो गया पे राग नू छड्ड के कोई नहीं जांदा कोई जा नहीं सकता जिथे ए गल कही जांदी सी पे राग कौन सुनेगा उथे हुण ए गल हो गई पे राग कौन नहीं सुनेगा कौन नहीं सुनेगा हर कोई सुनेगा क्योंकि राग एक विश्व भाषा है एक जाति दी एक देश दी किसे संप्रदाय दी किसे धर्म दी अपनी भाषा नहीं संगीत एक ओ भाषा है जो विश्व भाषा है। इस नूं आ तुहाडे कोल जिहड़े पौधे लगे ने आ मेरे पिछले पासे भी लगे ने पौधे ये भी सुनना चाहते ने ये भी शांति महसूस करते ने और ये भी प्रफुल्लित होंदे ने इन्हां विच भी बधेरा रस भरदा है। इस तों इलावा जानवर भी पशु भी बधेरा दुध दिंदे ने वह भी मस्त हो जाते ने इत्थे ही बस नहीं सप भी हो जाता पत्थर भी हो जाते ने फिर एक मनुख क्यों नहीं हो सकता। गुरु नानक का संगीत सुन के
मनुख क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, पर जे कीता जाएगा जिवें आप जी सारे किले गए, इसे तरह किले जाओगे ना जे फिर बार बार सुनोगे। इस करके आप जी ने जिहड़ा सहयोग दिता है, मैं आप जी दा बस जिवें पहला बेनती कीते पसीने दी डूंघाई चो धन्नवादी हाँ हर एक दा। और बाकी जितने भी रागी सिंह आए ने इन्हां दी देखो कैसी परमिशन है, गिनती कीती पर जदों गरीब नवाज ने बाणी रची तां उहदे च 52 नखरी रखी, ते जदों गुरु हरगोबिंद सिंह पातशाह जी ने ग्वालियर दे किले विचों कैदी छुडाए सन, बंधन च पै छुडाए सन, उह भी लोक 52 ही सन, 52 कलियां वाला चोला पाया सी। उस तों बाद धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपने दरबार विच 52 कवि रखे सन, पर जदों अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने सिख जगत की झोली च पाया खजाना तां 52 ही रागी मिले सानू। सानू कोई तो चिट्टियां कंधां ना जोड़ दिंदा कि संगमरमर लगदा तो संगमरमर लाउणा, कोई शामियाने ना जोड़ दिंदा। वैसे सब ठीक चंगा, मुबारक मेरे गरीब नवाज दे उच्चे मंदर भावें हीरे जवाहरात ना जड़े जान, मुबारक ने, पर मंदर नाल नहीं जुड़ना, अंदर नाल जुड़ना है। जेड़ी साड़ी जुड़न दी थां है वो मंदर विच बैठा, जड़ा मकान ही मकीम बैठा उहदे नाल जुड़ना है, मालक नाल जुड़ना है। इस गल तो सदा सचेत रहना, मेरिया भुलां गलतियां मैनू बख्शदे होए मेरे नाल फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कर कराए सी। तो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म बनाए सी, हुक्म ने कुरबान तक में कह महल पाए सी। खसमे भावे सो करे मन चिंदिया सुफल पाए सी।

ताप अपना पहले कसन लिया जरण नाहे अब जगत गद गर्भ डिया मंदक से नखिया पड़खे उपजिया मूर्ख नानो दिया।

ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀ

ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾਨੋ

मन मूर्ख अजहू नहीं समझत सिख दे हार्योनी सिख दे हार्योनी नानक पा।

प्यार नाल शरण करो। ये जो आप जी नूं मैं शरण करवा रहा अज उस दिन असी गुरमुख प्यारे सरदार जगजीवन सिंह जी सानूं नाल लैके गए और सब लोगों नूं वेख के जिहड़े धर्म का इजहार कर रहे सन अपने अपने तरीके नाल। और मैं भी उन्हां च क्या भाई दुनिया विच काफी लोग हैं जिहड़े बिल्कुल किसी गल नूं मानते नहीं और जिहड़े तुसी मनण वाले हो उही साडा परिवार है भावें तुसी किहड़े धर्म तों बिलोंग करदे हो। उसे तरह ही तुसी गुरु के प्यार वाले सिख जिहड़े आ गुरु नूं अपनी हाजरी लवांदे हो और मेरे कीर्तनीय वीर मेरे सामने बैठे हुए हैं गुरु कृपा करे इन्हां नूं चढ़दियां कला बख्शे। इस तरह ही गुरु घर दा संदेश दूर दूर तक पहुंचांदे रहण। श्रवण करो ए पानमती ए मत ताल है ए पानमती ताल है और गुजरी कबीर साहब की गुजरी राग भी गुजरी है और आप गुजरी सुनो गुजरी विच ही श्रवण करो इसनों और इस जो इसका ताल है वह 11 मात्र है पानमती ताल।

कबीर साहब कहते ने सब कुछ छड़ दिता है, तनना भी बुनना भी, हुण इको रब का नाम है लिखिया होया है अपने हिरदे ते। किड्डी वड्डी गल है, सब कुछ छड़ के मैं हरी दा नाम रब

कौडी बदले त्यागे रतन छोड़ जाहे वाहू का जतन सो संचो जो होची बात माया मोया टेडो जात अभागे तै लाज नाई सुख सागर पूरन परमेसर हर ना चेत्यो मन माही अमृत कौड़ा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवे न उस्तत करे निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों प्रिय

संगीत भुजंग प्रयाग छंद जागर दंग नागर दंग बागर दंग बाजे गागर दंग गाजे महा गाज गाजे तागर दंग तीरम तो कंकड़ाकंग तागर दंग काती कटारी कड़ाकंग दिरना दिरना दिरना।

झगड़ती थे हम थी तांग तागड़ती थे हम तेरना तागड़ती धर्म थी तांग तागड़ती थे हम तेरना तागड़ती धर्म थी तांग तागड़ती थे हम तेरना ताकृति धर्म धृत तांग ताकृति देम देना तत्र दान।

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: ये जल्दी शब्द रही तो एक पुरानी है लेकिन अस्थायी तक जो रावदी हुई ऐसी लाई हुई है।

ये आप जी ने बड़े प्यार दे नाल शरण कीता है। सिंह यूथ वाले सिंह पहुंचे ने तो साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी की बाणी दे नाल तो सारे का प्यार है, पर इन्हों का कुछ ज्यादा ही है। इस वास्ते इन्होंने हुक्म किया है कि तुसीं जरूर ही साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी तराना अखीर ते समाप्ति जड़ी है वह साहिब गुरु गोबिंद सिंह की बाणी दे नाल ही करनी है। साढ़े मन में ख्याल जरूर सी कि सतगुरां पातशाह जी का जो तराने हैं जां गुलदस्ते आप जी ने अगे कई बार सरवण किया है तो सतसंगी तराने दे नाल समाप्ति करांगे। आओ एक प्रार्थना रचना होर है जो आड़ा चुताला दी है, आओ वो आप जी बड़े प्यार नाल सरवण करो। शब्द कबीर साहब जी का है, आप जी नूं बंदिश का आनंद जरूर आएगा। इस राग का नाम लच्छा प्रदीप की राग है जो बड़ा ही पुरातन बड़ा ही पुराना राग है। तो पुरातन बंदिश है, बड़े प्यार नाल सरवण करो।

आब मोहे नाच नो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे। ये पावन शब्द सरवण कीता है। आओ एक जो के ज्ञानी ज्ञान सिंह अलमत साहब जी की बहुत ही सुंदर रचना जो आप जी ने पंथ विच बहुत ही गायन की है, जो उन्हां दी सब तो पहली हरमन प्यारी जिथे भी कीर्तन करते सन वह रचना संगत विच जरूर सुनाते सन, ते बड़ी कठिन है। आप जी उहदी लिखतकारी ते बंदिश की बनावट आओ अड़ाना बहार की बंदिश है श्रवण करनी कि किस तरह धूम परी जगत में तुमरी। ये आम नहीं किते भी गाई, पहली बारी जा किते किते इस बंदिश असा ने गाई है, तो ध्यान देना इहदी रचना पहला आप श्रवण करो, बोल जो बड़े औखे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की शिफत की है। ध्यान देना ब्रिज भाषा की ते संस्कृत की चीज है, ध्यान देना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंप्यो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो। इस उन्होंने कंपोजिशन बनिया है, ध्यान देना। इस चीज इन्नी औखी पढ़न औखी है, पर इस उन्होंने बंदिश का स्वरूप दिता है, बड़ा आनंददायक चीज है। ध्यान श्रवण करना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंप्यो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो, कंप्यो तरणी तर, कंप्यो तरणी तर, धरती कंब गई, कंप्यो तरणी तर, थारा रारा रारा कर इंद्रपुरी, धूम परी जगत में तुमरी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी आनंदपुर विच जय जयकार हो रही है, सारे पासे तुम पै गई, इंद्र दा दरबार, वड्डे वड्डे भीम जेड़े द्वापर युग दे विच बड़े बड़े बली सन वह भी कंब गए, गदातार वड्डे वड्डे भीम वर्गे अर्जुन वर्गे सारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शिफ तो सलाहन देख के उपरों धरती कंबण लग पी, आकाश कंबण लग पिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इन्नी चढ़त है। तो अगला पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। तीर पातशाह दे किस तरह चलते ने, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, छडत तीर कलगी तर, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, छडत तीर कलगी तर, सरा रारा सर के जावत तीर, सरा रारा सर के जावत तीर, छतियां चीर दुष्ट सबन के, तरफ तरफ निकसे प्राण, धागे रघुबीर महावीर रण तीर की, गिरत पगरी धूम परी जगत में तुमरी। तीसरा पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। चकर चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपक तबर महा जोद दुष्ट दमन करे। चक्कर न्यांग सिंह धमाले ते चक्कर पाउंदे हन, ते जदों रण मैदान च लोड़ पैंदी है शास्त्रां दी, ते जदों उह आखरी शास्त्र धमाले तो ला के ते चक्कर मार के सिर ला दिंदे सन। चक्र चलत खंड खंड चक्र चल रहे ने, चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपक तबर महा जुद दुष्ट दमन करे। गंधर्व अलमस्त के प्रभु की जग धूम परी, डरत पई शिवपुरी पेख आनंदपुरी। ब्रह्मपुरी शिवपुरी इंद्रपुरी सारे देवत्या ने पुरिया हैरान हो गया, तो डरन लग पिया आनंदपुरी देख के। तो ओ ये रचना बड़े आनंद दे नाल प्यार दे नाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस्तत अलमत साहब जी की रचना।

जी महाराज जी, गुरु जी बड़े मर्दे मर्द खुदा थे, बड़े आवदो जाहदो पार सा थे, गनी थे नबी थे, बड़े मुकदा थे, गाजी थे, दलावर थे, वो खैरे शफा थे, करवाने की मर्ज की वो आले दवा थे, देखने के गुरु गोविंद सिंह थे लेकिन जाहरे खुदा थे। तन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जाहरे खुदा ना सरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, एजी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे विच सारे गुण सन। विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, नैन तो नशीले, सतगुरु पातशाह जी दे नैन तो नशीले, मसतीले दो जादू परे, नैन तो नशीले मसतीले दो जादू परे, तनक निहार सब सुरत पलात है, तनक मात्र, तनक निहार सब सुरत पलात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, भक्ति और वीरता की गर्दन चुकात है, फतेह चाड़े आंगन और लक्ष्मी दबाए पग, गोबिंद मरगिंद गुरु जीते नहीं जात है। धन गुरु गोबिंद साहिब मरगिंद की तरह, शेर की तरह, सतगुरु पातशाह जी कदी भी रण मैदान विच हारे नहीं है, सतगुरु पातशाह हमेशा जित होए। तो सतसंग जी, औरंगजेब का ऐलान होया कि मेरे कन्ना विच इन्हां सिखां दी ढोलकी ते चिमटे की आवाज, ते ये जिहड़े सति श्री अकाल दे जकारे छड़दे ने, इन्हां नूं जरा चेतावनी कर दिओ, अपने सिपाहियां नूं कह दिता कि दस दिओ कि मेरे कन्ना विच ये ढोलकी चिमटे की आवाज ना पवे, मेरे कन्ना विच ये जिहड़े जकारे छड़दे ने सति श्री अकाल दे, इन्हां दी आवाज ना पवे। तो कुछ मसंदा ने आके सतगुरु पातशाह चरणा ते बेनती की, महाराज बड़ी डर वाली गल है, बड़ा एक अनोखा चैलेंज औरंगजेब का होया है, सतगुर आपां लड़ाई झगड़े विचों की लैना है, ते कृपा करो कि आपां एक भोरा फुट लईए। आप जी नूं असीं मशवरा दिंदे हां, सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे सतगुरु पातशाह जी, ध्यान देना, सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे, कहिंदे सतगुरु पातशाह जी गरीब नवाज जी ये कृपा करो कि आपां एक भोरा फुट लईए, उस भोरे विच बैठ के आपां ये आस्ता आस्ता हौली हौली पाठ करा करांगे, आस्ता आस्ता बाणी पढ़ लिया करांगे, ते हौली हौली ढोलकी वजाया करांगे, ते उत्थे जकारे छड लिया करांगे पूरे विच ही बैठ के, ते आपां की लैणा है लड़ाई झगड़े चो। ते सतगुरु पातशाह जी हस पए, कहिंदे ने तुसां ते ये मन विच ठान लई है, मन विच विचार कर लई है, पर सतगुरु पातशाह कहिंदे मेरे मन विच जो फुरना है वह भी जरा शरवण करो। सतगुरु पातशाह कहिंदे उन्हें यह ऐलान कर दिता है कि मेरे कन्ना विच ढोलकी की आवाज ना पवे, नगारा मर दो। सतगुरु पातशाह कहिंदे नगारे ते चोट मारो, नगारे ते चोटा वजन, ते सिंह चढ़दी कला विच जकारे छड्डन। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे तुसीं भोरे की गल करदे हो, असीं कहिंदे हां खालसे का जिहड़ा निशान है उच्ची पहाड़ी ते चुल्ले, दूरों दूरों पता लगे कि आनंदपुर साहब का यह लोहगढ़ का किला है, ये आनंदपुर साहब की पावन धरती है, गुरु कलगीधर पातशाह विराजमान हैं। तो सात संगत जी, सतगुरु पातशाह कहिंदे गुरसिखो, तो सतगुरु पातशाह कहिंदे आ बोल नगारे ते वजने चाहिए ने, ये जिहड़े बोल है धमाकेदार जोरदार वजनदार शक्तिशाली, ये जदों वजणगे नगारे ते देखो फिर उहदे कन्नां विच जदों गूंजा पैणगे तां पता लगेगा। तो सत श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी इन्ने अणख, सतगुरु पातशाह जी इन्नी जुरत, इन्नी शक्तिशाली वीरता दे पुंज सतगुरु पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह जी तो उच्चारण कर रहे तराना सत्यान देना। दागड़ दी धर्म दिगतांग, दागड़ दी धिम धरना, दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कुम करना, दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कुम करना, बागड़ दी बरिकते बांग तागड़ दी तोम तोम तरना, तदर दानी दानी तुम दानी तदर तुम धिरना। अखीर ते सतगुरु पातशाह कहिंदे धीम ते धरना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵੀਣਾ ਤੇ ਸਤਾਰ ਦੇ ਬੋਲ।